म गायिका जितु लामा तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ ग्रेस एफएम 107.6 MHz पत्ती कया आत्मिकी रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुबे विश्वास के चमक जयमसी जुजलता जे अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ देखि सकसिता नै लसको छ ठाउँमा बसन्नु शीर्षक दो जी भावी जुजु या जन्म जीको विश्वास के चमक हयादी भाग यसु ख्रिस्ट याका थगो हलिमे गछि आना ब्रिकल धका सोएको जु आदमया हिया वंश जन्म जुपे मुफी फुक्क मुख जिस सिजु फोकी यसु ख्रिस्टिया जन्म परमेश्वर मुनुया त मुक्ति दिगो मसिहया रूपे थगु गछ पुगे त बालक योजना देखा दिगो ख मरियमया त परमेश्वर पार्खे कृपा दत भुकी होया त भविष्य महसिया गर्न धारण ल्याए त सक्षम जी थो कथि जी श्रेणु लुका 1:26-27 पद के भ्याट गुदो एरी सिवाय पछि दुबु खुला देखा गाब्रियल धाम स्वर्गदूत या त हे परमेश्वर गालिले लागु नास्रते सहरे छोया दिन अनि योसेफ धाम मनु नाप कोसना तम बिहा म छोने म मिसा सम्बन्धु योसेफ जुजु दाउदिया सन्तान ख अनि म बिहा म छोने म मिसा यागु नाम मरियम ख मरियम योसेफ लिसे कोसना तम ख अर्थात हो आ योसेफ लिसे इता यागु मधुनी लुका 1:28 पद के धात बुदो स्वर्गदूत वो हे बिया मछुन मिसाया था मुन थे धान ए मरियम पनम प्रभु सन्त दया माया याना दिएको दु पनम प्रभु छनापन दि मरियम दया याह बोमख दया त लिया परमेश्वर थगु लस्ता केना सुन अनि प्रभु छिपे नाप दु तैको खग होइ मरियम छिसन परमेश्वरिया नीति छुयाए त सतो बने छिगो भनसा छिलिसे दिम प्रभुके छुमा छिगो जीवनया नीति परमेश्वरिया योजना पुरङ्के गो छिगो थगो क्षमता मखु लुका 1:29-30 पदके धात बदो थो नेमा वो तस्कर ज्ञात अले मन मन छु छुजु ढका विषया त स्वर्गदूत वया त धान मजम क्या परमेश्वर छन् त माया याना दिएको दु यो मेलि मजम परमेश्वर र अनुग्रह क्या चेगो ख छो वया त नला गु उपहार ख छा दासा र अझको सुन क्या गु अधिकार कमे यागो मधु चिसो परमेश्वर पाखे यो कुसला क्या त अवसर चुराके मफु इपे झिझा वै छा धासा परमेश्वर छिट मथिला याना दि अले झिट वो वस्तु बिमास्ते हो ताथे छिटे योग्य पनि ख गुनिसे धार्मिक इसाई त्यस मरियम या त प्रशंसा यामा पूजा यामा ओ परमेश्वर या पाखे प्रार्थना याना मानिमा धकासे बाइबल गणना भएर थुक ठाउँ पूजा या त निर्देशन मधु धर्मशास्त्र वया त छ बजे थिज्याम मनिया रूपे नभएका त गुसित परमेश्वर थगो अनुग्रह बि त लिया दिएको ख लुका 6:26 पद के धार त बुदु थो पछि दही छ छम क्या मच मिर्ची अनि उयाको ना छ यसु त काटी यो पिङ्गेन थन बचाउँदै

0: changes your mood, inspires loving yourself, encourages peace and self, guides positive thoughts and activity. Listen and enjoy Grace FM 107.6, the melody of your rhythmic life. Grace FM,
1: it's 2 PM. Din ko thik 2 baje.
2: क्षमाशीलताले सम्बन्धहरूलाई निको पार्छ। यसकारण आज कसै प्रति तपाईँको मनमा तितोपन छ भने उसलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ ग्रेस एफएम 107.6 MHz। सुनौ र सुनाऊ।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचापको जोखिममा छन्। प्रशोधित तथा तयारी खाना, जंक फूड तथा डिब्बाका खानामा सोडियम धेरै हुने हुँदा मुटु रोगको जोखिम बढ़ाउने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा व्यक्तिले दैनिक 5 ग्रामसम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको छ।
4: नियमित रूपमा हिँड्नु र शारीरिक व्यायामले मुटु स्वस्थ बनाउन मदद गर्छ।
3: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निन्द्रा, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
4: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं।
3: चिल्लो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफूल खाऊ।
4: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौं।
3: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताऊ।
4: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
5: Sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, sunao, s

सकाचे मसलो घराए दीदी भिनाज विश्वास साँचो ईश्वरीय सुखी पत्याए भल पर एकाचे मसलो घराए दीदी भिनाज विश्वास सुखी पत्याए

0: is new, small, and child.
1: कुनै पनि चाड पर्व अथवा विशेष अवसरमा के तपाईँ नयाँ फेसन खोज्दै हुनुहुन्छ? स्टाइल पनि गुणस्तर पनि अनि मूल्यमा पनि बचत चाहिएको छ? यदि त्यस्तो हो भने आउनुहोस् राजु फेसन हाउसमा। विगत तीन दशकदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित जेन्सका सम्पूर्ण लुगा कपडाहरू शिरदेखि पाउसम्म अहिलेको ट्रेन्डिङका लुगा कपडाहरू जुत्ता चप्पल फर्मल तथा क्याजुअल रेडीमेड सम्पूर्ण कपडाहरू एकै छाना मुनि 20% छुटका साथमा राजु फेसन हाउसले धमाधम लुगा कपडाहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। साथै विभिन्न चाड पर्व तथा मेलाहरूमा विशेष छुटका साथमा लुगा कपडाहरू उपलब्ध रहेको छ। यसै विज्ञापन सुनेर आउनुहुने सम्पूर्णलाई विशेष छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदछौ। राजु फेसन हाउस तपाईँको आफ्नै फेसन गन्तव्य। प्रोप्राइटर राजु ताना बासु। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9851927740 9841362013। राजु फेसन हाउस टुरिज्म मार्केट राम मन्दिर भक्तपुर।
2: आज ही मेरा दिल को दूध छिया आपने के जिया जो स्पार्क माई फेथ जो को विश्वास के चमक खया बे जीवने शैलभूत हासे ध्यान बिउ जयू से जोजन पाजी अमृता महर्षण कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ यो जीवन या छे श्रृंखला भाग सात के छी सकसित सुबह थोड़ी छोड़ जीवन दू शाचा संबोधन या थोर शारीरिक स्याचा नौ जुफु मो भावनात्मक स्याचा नौ जुफु यो नापा चिसो व्यवहार यापी मनुते पाखी चिसो चुनावया सुनु भावनात्मक कार्य दक्ने तदनु स्याचा या स्रोत ख चिसो यामे शारीरिक स्याचा या त छु भावनाको रूपे विचार ऐसा न आखे युग को अवस्था दू बोनो शाचा जीगो नीति सवाल यू जाए छह भाषा शाको ने जीगो बहुत ही प्ले छुजुया सुंगो दू तका सीखे फोन बुले गुले जीगो भीगो जीगो नीति जानजो उके शाने सुंगो था लामा तका जीसो बिसावेना जाया मागो दू उदाहरणले लागि कथिकी छिगुला छ्याना चुङ्गु निया निक्क तल भाषा छिगुला तुरुन्तै तापक्क निम्की छि छ्या थे यानागु भाषा मियाना छिगु लाते फुना मै अले छ्याना चुङ्गु नि छु कथन स्याचा मचासा मि युक्कु निक्क लातला तै एना पयातल भाषा छुकी पस्क खापा जिफु मेरो उदाहरण छिगु ने संक्रमण कारण छिट स्याना चुङ्गु मनसु स्याइना फु छगु स्याचा या कारण छिगु मे संक्रमण जुया चुङ्गु थासे बालक सोया सचेत जी अनि संक्रमण पाखे छुटकारा जु त मागु पला याके त प्रेरित जी छ भाषा छिट आ स्याचा मनसु स्या नास्ति मल अनि छिट स्याचा मधुगु संक्रमण जुगु खसा संक्रमण हो यो को ई तक्क मतलब यही मुखु छुके छिगु माया त तदङ्गु नोक्सा न्यासु यो को ही जुगु संक्रमण कारण छिगु मुनब निकाया छे मालिगु जुफु छि मनसु स्याना छोरो पीडा या त संकेत थे विचारया मो स्यागु कारण या त सम्बोधन याय त थुके छिट सत्ता चौगु दु उके स्यागु मदुवा उनीमा धका भावनात्मक पीडा न अथि हि ज्या यै विभिन्न छिट त हुई निराश हुई याकचा जुई दुख जुई उदास जुई वो डिप्रेसन महसुस जुई छो छगु संकेत ख कि छिके छु भावनात्मक समस्या दु मुखिया त छे सम्बोधन याईमा अलि छि थुकिया त व्यवस्था याइगु लेया दिल भाषा थो मदिया गुनि मुखु वास्तविक थो झन भावनामा मुनिगु सम्भावना दु छि थुकिया त सम्बोधन याई त पला मुनियाको तले झिगु मुग हो हृदयके दुई छुङ्गु भावनात्मक आघात या त कथियाना समाधान याइगु सच्ची पीस मुनिगु अध्याय यो सुङ्गु पदे तयातबुदु वेकन मुगल क्वाटुबिन्द लाकादी अनि इङ्गु खाले पट्टी चिनादी पनिश्वर छम जक्क ख छिगु टुटे जुगु नुगया त लाके फुम वेक लाके फुम पनिश्वर हे ख छिद यागु हे भावनात्मक पीडा महसुस युवा सुन धासा पनिश्वर के छबु समाधान दु गुकी ठुकिया त लुङ्की मुख्य पुस्तक छिछगु अध्याय निचाको पदके धाता गुदु कु कुबिया त्यहाँ साथे सुक्ख जिठा चासु लङ्क वा जुन चिन्ता आराम दे छोसित यसो बिउ बिना पङ्ख प्रार्थना वेक या त मानिबु निवादिस अनि छिबु दिने महसुस सियाइबु दक्ख पीडा वेकला नाप व्याख्या याना दिस अनि छिट भाषा वेला मुनि खोजिहाक हुँ वेकला छिबु ये लाके त न चुनावी एर्मिया झिङको अध्याय झिङखुनी पोते धातको दो छिबु वचन वेदले झे उपी वचन नया छिगु वचन याना झिटाउने फुल जिगु नुगले नस्ता भेगुल हे दक्को शक्ति दुनु परम प्रभु परमेश्वर मनु त्यसमा जित सिक्पिङमा मनु धाइगो छिगु भावनात्मक काया त लङ्केत गुहाले जिगु मेगु खौ धैगु परमेश्वर या वचन बिया तगु प्रतिज्ञा या त मन न्यायको हे ख छिगु अवस्था या त सम्बोधन न्यायगु बाइबले चोङ्गु प्रतिज्ञा माना दिस बाइबले वो पद मुमङ्का दिस थो हाना हाना धवा दिसौ अनि ठुकी बुझुन छिगु स्यासा ननाउने भजन श्रीगु अध्याय यागु पदे धातको दु वेकया त भैगु घोपल खया निकि जक ख वेकया दया माया मसितले दया सुने चक्षु खेमासँग सुथला जित सुख दे परमेश्वरीय मतिना छिगु आत्मा दुहा वे त पिया दिसौ सुझा बिया वेकया उपस्थिति दुहाउनु अले पक्का न छिगु खोबी हिने गुली छिनी म छिगु दुःख आनन्दको परिणत छु थै वचन निना दिगुले छिट परमेश्वर सुधाबुना जोसे शिक्षा नकटिनी हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी नपुकेना दिन सोमन भिक्टर चोयादीको घोषणा जिगु हे नेपाल भाषा या रेडियो ज्याजो स्पाकमा फिट जिगु विश्वास के चमकया दिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा सफलतया दिफै उकिया नीति जिनके जिगु मोबाइल नम्बर 2 98 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुने छिट यकु यकु सुधा परमेश्वर छिट सवा बिमा जय हस्ती।